0: तो थई मान। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व में बिखरा हुआ बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी। और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के दो क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में है। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: We diversified our sources.
4: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में LPG उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: LPG की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की

0: घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चेउ हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की

0: को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। रीपोलिंग बिगिंस इन 15 पोलिंग स्टेशंस ऑफ 2 असेंबली कंस्टिट्युएंसीज इन वेस्ट बंगाल। फील्ड ऑपरेशंस फॉर हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अंडर फेज 1 कमेंस इन 5 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
3: Among these, 11 are in Pashchim Mograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallu Bagchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court Justice Krishna Rao dismissed the

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार मुंबई, सुबह के 8:40 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई। आज शनिवार है और शनिवार को दिल अपनी खुद की कहानी सुनना चाहता है और हमारा जो शो है वो उसका नाम तो आप जानते ही हैं। आज मस्त मुंबई का जो शो होता है उस दिन हम आपको सुनाते हैं एक दिल का फसाना और हम सबकी भीड़ वाली जिंदगी में कुछ बातें दिल में रह जाती हैं, कुछ सपने, कुछ डर और कुछ कहानियां। और आज इन्हीं दिल की कहानियों में से एक कहानी ऐसी आएगी जिसने विज्ञान को भी चौंका दिया। जब वो कहानी आप सुनेंगे तो महसूस कर पाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए।

तो भाई आई होप आपको किक लगी गई होगी, शनिवार का दिन है, सोकर उठ ही चुके होंगे। आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM, आज है शनिवार और जो कार्यक्रम है मस्त मुंबई उसमें दिल का फसाना सुनाने आई है आपको आपकी अपनी दोस्त माला। कभी सोचा है दिल का फसाना सिर्फ प्यार नहीं सुनाता, वो हौसले भी सुनाता है। और इसी हौसले से निकली थी एक लड़की जिसने कागज के बने जहाज उड़ाते और उड़ाते अंतरिक्ष को अपना घर बना लिया। आज हम बात करेंगे कल्पना चावला की, एक ऐसा दिल जिसकी कहानी धरती पर शुरू हुई और आसमान में लिखी गई। तो इस अलबेली कहानी को सुनाने से पहले आपको सुनाई कि आपकी दोस्त माला, ये खूबसूरत नगमा कुमार सानू और देवकी पंडित की आवाज में, कभी हाँ कभी ना फिल्म से।

आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM 9:02 और ठीक 50 सेकंड हो चले हैं। कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई दिल का फसाना, कल्पना चावला के दिल का फसाना आज आपके साथ आपकी दोस्त माला शेयर कर रही है। और हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स भी जुड़ गए हैं जिसमें अंजू जी जुड़ गई हैं अंधेरी ईस्ट से, और वैसे आमतौर पर अंजू जी हमारे साथ जुड़ ही जाती है। श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत वाड़वन से आ रही है, मिलेश राउत भी है टिगरेपाड़ा से, ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दीपा पालकर भी सुन रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि अपने चाय के कप को जो है उम्मीद से भर दो और जिंदगी में शांति रहेगी और प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। और जो ग्रेटिट्यूड ओवर कंप्लेंस जो है, हमेशा शिकायतें नहीं करते रहना चाहिए और चिंताओं में थोड़ी खुशी भी ला देनी चाहिए जिससे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि लाइफ जो है बिल्कुल चाय का कप है उसी के जैसी होती है। तो दीपा पालकर जी, बहुत अच्छी सी सलाह आपने हमें हम तक पहुँचाई है और हमने आप सभी के साथ शेयर कर दी। विजेंद्र खटोल अकोला से हमारे साथ जुड़ गए हैं और फिर उससे घिनपुरिया भी हमें सुन रहे हैं, वहीं शुभदा भी जुड़ी हुई है और साथ ही साथ एक लवली वीकेंड की शुभकामनाएं भी इन्होंने हम तक पहुंचाई है। शुभ लक्ष्मी मस्तकार गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। विक्रम अठावले जो है साथ में उनके हैं, विद्या अठावले मिरट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद चिंचोलकर भी हमें सुन रहे हैं उमरी अकोला से। पंकज महोड भी कह रहे हैं कि कार्यक्रम में जो गाने बज रहे हैं ना वो उन्हें खूबसूरत लग रहे हैं, मजा आ रहा है सुनने में। रजनीकांत रघुनाथ पाटिल वाड़वन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद कारखानिस पुणे से सुन रहे हैं। प्रदीप अनंत कृष्णन भी हमसे जुड़े हुए हैं और धीरज चौहान भी नमस्ते कह रहे हैं। भाई नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम मस्त मुंबई में जुड़ने के लिए। साथ बनी हुई लगातार आपके आपकी दोस्त माला और बात दिल के फसाने में आज हम कर रहे हैं कल्पना चावला की, क्योंकि आपकी और हमारी यारी इतनी खूबसूरत है कि ये जो गाना है ये बजना ही चाहिए आज शनिवार की छुट्टी के दिन।

जी हाँ, हमेशा अपनी जिंदगी में अपने अंदर ही झांक कर सबसे पहले देखना चाहिए, तभी जिंदगी का असली फसाना और दिल का फसाना भी बाहर आ पाएगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप हमें 24/7 लगातार सुन सकते हैं, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आपको नंबर बता देते हैं 8657661071 यानी 8657661071। आपका मैसेज जरूर शामिल करेगी आपकी दोस्त माला। और आज दिल का फसाना हम आपको सुना रहे हैं कल्पना चावला जी का। करनाल की छोटी सी गलियों में एक लड़की चलती थी और ऊपर आसमान को ऐसे देखती थी जैसे वो उसका ही हो। लोग बोले लड़की है नासा, पर उसके दिल ने कहा मैं उड़ूंगी। वो हर ना को हाँ की सीढ़ी बनाती गई और उसका दिल का फसाना स्पेस शटल कोलंबिया के साथ दुनिया तक क्या दुनिया से बाहर पहुंच गया। कहते हैं वो गई, पर उसकी कहानी आज भी वही हवा है जो हर लड़की कहती है डर मत, उड़ मत, हौसले बुलंद रख, तू कमजोर नहीं बहुत ताकतवर है। ऐसा ही कुछ फसाना है कल्पना चावला का।

आन महबूब खान निर्मित दिग्दर्शित पहली टेक्निकलर फिल्म की अनोखी दास्तां मूवी माइलस्टोन्स विद भावना सोमया 1 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM।

वैसे जब सपनों की उड़ान ऊंची होती है तो जिंदगी वाकई में तारा रमपम हो जाती है, और ऐसी उड़ान भरी थी कल्पना चावला ने स्पेस शटल कोलंबिया के साथ, और वो डरी नहीं, उड़ी जरूर, और आज भी हम उन्हें याद करते हैं इसी उड़ान की वजह से। और मुंबई में भी ऐसे कई दिल हैं जो रोज धड़कते हैं, कोई लोकल ट्रेन में खड़े खड़े यूपीएससी का सपना पकड़े हुए है, कोई मॉर्निंग ड्यूटी से लौट कर रात की पढ़ाई करता है, और कोई माँ सोचती है कि मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। इस शहर में जादू है, लोकल से आता है, और हौसला जो है वो दिल से आ जाता है, और बस एक सही पल, एक सही धड़कन आपकी जिंदगी को बदल सकती है, लेकिन हौसला जो है हमेशा आपको अपने साथ रखना होगा, तभी आप एक ऊंची उड़ान जो है भर पाएंगे। और फिर लोग इस गाने में जितने जोर से नाम लिया जा रहा है उतने ही जोर से आपका नाम भी पुकारेंगे, बिल्कुल इसी गाने की तरह। कार्यक्रम चल रहा है दिल का फसाना, आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर, साथ बनी हुई है मस्त मुंबई में आपके, आपकी दोस्त माला।

तो भाई इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम लिया जाए बुलंद तरीके से, तो हौसला बनाए रखिए और ऊंची उड़ान हमेशा भरते रहिए। और ये मैसेज हमारे पास पंकज मोहड का आया है अमरावती से, और वो कह रहे हैं कि हौसला बरकरार रखना होगा सपनों की ऊंची उड़ान के लिए। ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी और कल्पना

बिमला जी करनाल की छोटी सी गलियों में चलती थी, पर नजर उनकी हमेशा आसमान पर रहती थी। कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है। और सुरेश काशीनाथ पाटिल विनाश दामोदर कडू वार्ड 1 टिघरेपाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज सुगन पुरिया भी हमें सुन रहे हैं और उनके साथी भी, सारा ग्रुप उनका वर्ल्ड म्यूजिक लवर जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है हमारे साथ और एक कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। विजेंद्र खटोला कोला से सुन रहे हैं। दत्तात्रेय आदत वेलापुर से हमें सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग उन्होंने भेजा है। बाबा दादर से जुड़े हुए हैं और शुभलक्ष्मी मस्तकार को गाने उन्हें पसंद आ रहे हैं। अजय साखरे इंदौर से गुड मॉर्निंग उन्होंने भेजा है, तो भाई गुड मॉर्निंग आपको भी। प्रदीप अनंत कृष्णन ने हमें दो बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर साहब से उनकी मुलाकात 1999 में हुई थी। चांदनी गाना उन्होंने सुना फिल्म का, उसके बाद उन्होंने ये मैसेज हमें भेजा और उन्होंने कहा कि श्रीदेवी जी से वो 1994 में लाडला फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे। तो भाई बहुत लकी हैं आप प्रदीप जी। और राजेंद्र बापाए भी हमारे हालचाल पूछ रहे हैं और उन्हें श्रीदेवी बहुत पसंद थी, बिल्कुल अफलातून की तरह, तो उन्होंने वो मैसेज हम तक पहुंचाया है। दीपा पालकर भी सुन रही हैं और वो कह रही हैं कि उन्हें जानकारी पसंद आई और वो जानकारी जानने के बाद उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक सुविचार जो है वो याद आया, वो उन्होंने हमें लिख भेजा है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो भाई अगर आपके भी ऐसे सपने हैं जो आपको सोने नहीं देते तो उन्हें पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। पंकज महोट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमर पाटिल अलीबाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस घंटे में हमारे साथ जुड़ने के। कार्यक्रम मस्त मुंबई दिल का फसाना, कल्पना चावला के दिल का फसाना आपके साथ शेयर कर रही है आपकी दोस्त माला। और कल्पना चावला ने एक बार कहा था कि जब उड़ने का मौका मिले तो पीछे मत देखो, और शनिवार की ये सुबह यही याद दिलाती है कि दिल का फसाना कभी गलत नहीं होता, गलत होता है सिर्फ और सिर्फ डर। तो मुंबई आज कुछ ऐसा करना जो तुम्हारे दिल ने कब से कहा है और तुमने उसे सुना नहीं, क्योंकि असल में दिल का फसाना आपकी कहानी का पहला पन्ना होता है। तो अगर अपने पहले पन्ने को आप लिखना चाहते हैं खूबसूरत तरीके से तो पीछे बिल्कुल मुड़कर मत देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर, क्योंकि हम तो रमे ही रहते हैं जोगी की तरह आपके साथ 24/7।

0: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: तो भाई हम तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत से घबराते नहीं है, इसलिए हम आपके साथ जुड़े रहते हैं लगातार 24x7 आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर। और प्रदीप अनंत कृष्णन जो है हमें गणपति के उन्होंने बढ़िया से पिक्चर्स नहीं बजरंग बली के फोटो भेजे हैं हमारे पास और उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। प्रमोद चिंचोलकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पंकज मोहट भी सुन रहे हैं विजेंद्र खटो लकोला से, श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत वाडवन टिगरेपाड़ा से लगातार मैसेज बार बार आप पहुंचाते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके मैसेज लगातार शामिल करें बार बार। जितने प्यार से आप हमसे हम तक पहुंचते हैं उतने ही प्यार से हम आपके पास पहुंच जाते हैं। वहीं शुभ लक्ष्मी मस्तकार ने गाने की फरमाइश की, अगले घंटे में कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश जो है हम जरूर जरूर पूरी करें। और अंजू अंधेरी ईस्ट से 1975 में अपने जो सपने को उन्होंने पूरा किया उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर बन गई, बनना चाहती थी, मेहनत की, हौसला रखा और आगे बढ़ गई। और इसी तरह ऐसे ही हम भी आगे बढ़ रहे हैं अगले घंटे में, और मैं अकेले नहीं रहूंगी अगले घंटे में। नमस्ते भारत, सुनो ऐ दुनिया वालों, के साथ होंगे आप और हमारे साथ होंगे आदित्य भी शो पर। आदित्य आ चुके हैं ऑलरेडी स्टूडियो में।
1: नमस्कार दोस्तों,
0: तो होगी मुलाकात अगले घंटे में, वो घंटा दूर नहीं है, कुछ 4 मिनट या 3.5 मिनट का समय है, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। छोटा सा न्यूज ब्रेक और उसके पार नमस्ते भारत माला और आदित्य के साथ। एंजॉय कीजिए FM रेनबो का इस घंटे का आखिरी गाना, क्योंकि हम सभी बन जा रहे

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो 107.1 चैनल। आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत कल से मकान सूची क्रम और मकान गणना आरंभ हो गई। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में आज से आरंभ हो गई। यह सुविधा 15 मई तक रहेगी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर आज शाम एक ट्रेलर ट्रक ने मिनी बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसके परिवार के 15 सदस्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार टायर फटने के कारण मिनी बस धीमी हो गई थी, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि वह युद्ध समाप्त करने की बातचीत में ईरान के नवीनतम प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने आज व्हाइट हाउस में हुई प्रेस वार्ता में कहा कि हम ईरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि कल रात ईरान ने बातचीत के लिए अपना नवीनतम प्रस्ताव पाकिस्तान को सौंप दिया है। IPL क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने कल राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसी तरह इस घंटे के मुख्य समाचार खत्म हुए। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 चैनल।

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्ते दोस्तों, नमस्ते भारत। आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM स्वागत है आपका इस घंटे में। माला जुड़ गई है और साथ में है
2: आदित्य।
1: तो भाई सुनो सुनो है दुनिया वालों, अगर आज मैं कहूं कि आपकी एक टैप, एक सेंड और एक फॉरवर्ड किसी की जिंदगी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है तो
2: हाँ। सैटरडे है पर एक बात दिल से पूछिए, हम डिजिटल दुनिया में कितने इंसान बचे हैं?
1: और आज नमस्ते भारत में बात करेंगे इसी डिजिटल काइंडनेस की।
2: ऑनलाइन दुनिया में वो छोटी छोटी इंसानियत जो बड़े फर्क ला देती है। चलिए शुरुआत करते हैं दिल से और सोच से।
1: और कार्यक्रम है आपका अपना नमस्ते भारत, सुनो सुनो है दुनिया वालों, और सबसे अलग अलहदा बातें हम यहाँ इस घंटे में करने वाले हैं आपसे।

0: डिजास्टर है। वो हंसकर इग्नोर कर रही थी, पर सच कहूं दिल पर लग गया।
1: हाँ लगेगा ही, क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि शब्द चोट करते हैं, और तभी तो वो शब्द जो है उसको चोट कर गए। और उसकी छोटी बहन ने एक छोटा सा कमेंट भी किया कि नेचुरल ही सबसे खूबसूरत है,
0: प्राउड ऑफ योर रियलनेस। और मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, आदित्य मैंने फोटो डिलीट नहीं की क्योंकि एक मीठी लाइन ने बाकी सारे नेगेटिव कमेंट्स की आवाज दबा दी थी।
1: तो वाकई में दबा देती है वो आवाज, क्योंकि डिजिटल जो दुनिया है उसमें नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत बहुत तेज होती है, लेकिन
0: काइंडनेस हमेशा उसका वॉल्यूम कम कर देती है।
1: तो इसलिए आपको काइंड बनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिविटी को, जो कमेंट्स जब आप करते हैं डिजिटली, तो नेगेटिविटी जो है वो कम होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमेशा हर बात का मर्म समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।
0: एग्जैक्टली।

0: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम कार्यक्रम नमस्ते भारत, सुनो सुनो ए दुनिया वालों। और आज बात कर रहे हैं हम
1: डिजिटल काइंडनेस प्रैक्टिसेस की।
0: देखिए सैटरडे का मूड है और वीकेंड आ गया है, थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम है, लेकिन अगर आज ही हम थोड़ा सा डिजिटल काइंडनेस की प्रैक्टिस कर लें तो वीकेंड और हल्का लगने लगेगा।
1: सोचिए ना, किसी दोस्त के पोस्ट पर जेन्युइन तारीफ, किसी बूढ़े दादा दादी के फॉरवर्डेड मैसेज पर गुस्सा नहीं प्यार से समझाना, कमेंट सेक्शन में किसी को गिरते देख मजा नहीं लेना उसे उठाना, यह छोटी बातें हैं पर डिजिटल दुनिया में ये ही असली रिचनेस है।
0: और आजकल तो हम इस डिजिटल जो दुनिया है इसमें सुबह उठते के साथ ही खो जाते हैं। क्या कहते हैं आदित्य आप?
1: हाँ बिल्कुल, मतलब ब्रश करने से पहले तो हम लोग पहले फोन चेक कर लेते हैं।
0: और आप भी तो हमारे साथ जुड़ते हैं इसी डिजिटल दुनिया की वजह से, तभी तो आप हमें मैसेज करते हैं 8657661071 पर और बताते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। तो जो डिजिटली जो दुनिया है वो मुझे लगता है हमारी जिंदगी में बहुत अहम हो गई है।
1: जैसे कि अभी हमारे जो श्रोता हैं जो व्हाट्सएप से हमें हमारे संपर्क में रहते हैं और वो हमेशा अपने अपने जो ख्याल जो हैं, जो बातें हैं वो हमारे साथ साझा करते हैं। जैसे कि अयूब शाह है अंबा नगरी अमरावती से, विजेंद्र घाटोल जी अकोला से, जिन्होंने अपने कटहल के कुछ फोटोज भेजे हैं उनके पेड़ के। प्रणव शिंदे जी हैं, टी आर वासुदेवन जी हैं बदलापुर से, श्रेय राउत, मिलेश गजानंद राउत वाढ़वंड से, प्रदीप अनंत कृष्णन है बाबा जी है दादर से, राम प्रजापति, ज्योत्सना दाभुलकर अंधेरी ईस्ट से, अरविंद कुलकर्णी जी है, स्नेहा जी है वर्ली से, शुभलक्ष्मी मस्तकार जी है, राजेंद्र झुटानी जी है कांदिवली वेस्ट से, अजय साखरे इंदौर से हैं, दत्तात्रेय आड़त है व्यापुर से।
0: तो भाई ये तो रहे आपके नाम, लेकिन आपने जो हमें डिजिटली मैसेजेस भेजे हैं वो मैसेजेस हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम आपको सुनाएंगे ये खूबसूरत सा नगमा ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, और जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी।

0: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम कार्यक्रम नमस्ते भारत, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, आपको हम एक मिनट का चैलेंज करते हैं। मैंने लोगों से पूछा कि भाई एक डिजिटल काइंडनेस जो आपने की या आपको मिली उसके बारे में आप हमें बताइए। तो आशा जी ने बोला कि मेरी गलत इंग्लिश वाले पोस्ट पर किसी ने कभी मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि ये कहा कि आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है कि आप लिख पा रहे हैं, मैं रो पड़ी थी खुशी से। विरार से राहुल, गेम में हारने पर लोग गालियां देते हैं, एक लड़के ने बोला और बोला कि ब्रो नाइस ट्राई, नेक्स्ट टाइम तुम जीत ही जाओगे। और बूस्ट ये मिला कि बस मिल ही गया। और आप जो सुन रहे हैं हमें, आपकी ऑनलाइन जो आपने इंसानियत देखी है उसे बताएंगे आदित्य आपको।
1: तो हमारे जो एक श्रोता है प्रणव शिंदे जी,
0: साथ में प्रकाश शिंदे भी है,
1: हाँ, तो इन्होंने एक अच्छा सा एक मैसेज भेजा है। स्क्रीन के उस पार भी दिल धड़कते हैं, लफ्जों को जरा संभाल कर लिखा करो। स्क्रीन के उस पार भी दिल धड़कते हैं, लफ्जों को जरा संभाल कर लिखा करो। प्यार की एक इमोजी से खुशियां बांटो, नफरत तो जमाने में बहुत है, इसे कम किया करो। कमेंट में अपने तहजीब का रंग भर दो, अजनबी को भी भाई बहन का हक दो। डिजिटल दौर में अपनी इंसानियत दिखाओ, अपनी अच्छी बातों से किसी का दिन सवार दो। ट्रोलिंग को शोर में हमदर्दी की सदा बनो, किसी के टूटे मन की तुम दवा बनो। स्क्रीन पर सादगी और दया की महक लाओ, वर्चुअल दुनिया में भी तुम खुदा बनो।
0: तो भाई कह सकते हैं कि इन्होंने जो मैसेज लिखा है वो लगभग जो है डिजिटल दुनिया की असलियत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह हमारे पास दीपा पालकर ने भी अपनी फरमाइश के गाने जो है भेजे हैं। तो दीपा जी, आपको बता दें कि ये जो फरमाइश ही प्रोग्राम नहीं है, आप 12 बजे के शो में जब आप मैसेज करेंगी तो आपकी पसंद के गाने जरूर बजाने की कोशिश की जाएगी। और ये मैसेज हमारे पास श्रेष राउत, मिलेश गजानन राउत, प्रदीप अनंत कृष्णन, तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भेजा करते हैं। फिल्टर कॉफी भी उन्होंने भेजी है अंतर,
1: और साथ ही वो फिल्टर कॉफी पीते पीते शो हमारा एंजॉय कर रहे हैं, कितना खूबसूरत।
0: और भी बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ,
1: प्रमोद चिंचोलकर जी ने भी अपनी फोटो भेजी है और साथ में हम दोनों को गुड मॉर्निंग भी किया है अकोला से।
0: और मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं। आप
1: राम प्रजापति
0: जो हैं ये भी जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग की चाय इन्होंने हम तक पहुंचाई है, बाबा दादा से खूबसूरत सा गुलाब इन्होंने हम तक पहुंचाया है। और वहीं ये मैसेज जो है अय्यूब शाह का है, अंबा नगरी अमरावती से, वो कह रहे हैं कि गाने जो है वो जो बजाए जा रहे हैं उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। और वहीं ये जो आपका नाम है ना सुरेश काशीनाथ पाटिल, अविनाश कडू पाटिल, ये जो है मुझे एनिमल मूवी की याद दिला देता है। और शुभ लक्ष्मी मस्तकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी प्यारे प्यारे मैसेजेस शेयर किए हैं। और ये मैसेज है हमारे पास विजयंत
1: चितय जी है पुणे से,
0: और वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने मराठी में एक मैसेज लिखा है, तो आदित्य वो आपको बताएंगे।
1: तो वो डब्बा स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं।
0: और कुछ हमें जानकारी देना चाह रहे हैं और खेलों के बारे में भी कुछ बता रहे हैं। और साथ ही साथ पंकज महोट भी नमस्ते भारत से जुड़े हुए हैं, प्रणव शिंदे भी जो है वो हमें शुक्रिया बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम जो है चल रहा है नमस्ते भारत, सुनो सुनो है दुनिया वालों, और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल काइंडनेस की। आदित्य, डिजिटल काइंडनेस आपने कभी महसूस की है?
1: हाँ बिल्कुल, मैं खुद हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी हेट या किसी को बुरा लगे ऐसा कोई मैसेज किसी को जाए नहीं, साथ साथ में ऐसी कोई पोस्ट कहीं पे भी वायरल होती हो तो भी मैं उसे फॉरवर्ड नहीं करता। तो शायद जो जिम्मेदारी है वो खुद से शुरू होती है, ऐसा मैं
0: और हमें उसे फिर आगे बढ़ाना चाहिए। और हम वैसे ऐसी ही चीजें गुनगुनाए जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, तभी तो असली डिजिटल काइंडनेस होगी।
1: एग्जैक्टली।

0: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम कार्यक्रम नमस्ते भारत सुनो सुनो है दुनिया वालों, और जो दुनिया है उसे बदलने के लिए
1: बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए,
0: बस हर फोन में थोड़ी सी इंसानियत चाहिए।
1: क्योंकि ऑनलाइन हम अवतार बन जाते हैं
0: बट ऑफलाइन दिल जो है वो वही रहता है।
1: तो सुनो सुनो है दुनिया वालों, अगर डिजिटल दुनिया मुश्किल हो गई है
0: तो हम आसान बने,
1: और अगर हार्श लिख रहे हैं लोग
0: तो हम सॉफ्ट लिखें, और
1: अगर कोई गिर रहा है तो हम पकड़ लें। यही है आज का सैटरडे मंत्र।
0: साथ में हूँ मैं आपके माला
1: और मैं आदित्य।
0: टेक्स्ट नहीं दिल भेजिए और नमस्ते भारत पर नमस्ते कहिए। सुनो सुनो है दुनिया वालों, फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आदित्य और माला आपसे लेंगे इजाजत इस वादे के साथ के
1: कल फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे,
0: मिलते रहेंगे और आपको ऐसे ही एंटरटेन देते रहेंगे। आपको अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो मैसेज जरूर करिएगा। आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmrainbowhindi2@gmail.com पर, और अगर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8657661071 यानी कि 8657661071 पर। फिलहाल हम कहेंगे आपसे
1: अलविदा
0: और आप सुनते रहिए ये दो गाने बैक टू बैक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा कि चलन में मौजूद 2000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित है और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। समाचार के अंत में, बैडमिंटन में डेनमार्क के हॉर्सेंस में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

जी हाँ, समय ठीक 11:02 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम ब्रेक फ्री का। मैं हूँ आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका हमारा साथ बना रहेगा ठीक 2 बजे तक। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: हाउस लिस्टिंग आणि हाउसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: जी आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर. मैं हूं RJ किरण माला इस समय आपके साथ और हमारा साथ बना रहेगा ठीक 2 बजे तक. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सपने देखने पर किसी तरह की रोक नहीं है. कोई भी इंसान कैसा भी सपना देख सकता है और लाखों करोड़ों लोग खुद को लेकर बड़े बड़े सपने देखते भी हैं, पर कुछ गिने चुने ही होते हैं जो इन्हें पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं. इन्हीं गिने चुने लोगों में एक नाम आता है महान हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का. हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म पुणे के पास एक गांव में हुआ था. धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं. उनकी गिनती अपने समय के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में की जाती है. हॉकी के क्षेत्र में उनका योगदान अतुल्य रहा है. हॉकी के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया है.

0: आपला विकास।
1: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाउस लिस्टिंग आणि हाउसिंग सेन्सर्स म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल। तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया। प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे। जनगणना 2027 आपली आहे। जनगणना आपली आहे।
2: जी समय ठीक 12:15 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। मैं हूँ RJ किरणमाला। इस समय आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा ठीक 2 बजे तक। तो आप सभी ने फिल्म जब वी मेट तो ज़रूर देखी होगी। इस फिल्म में कलाकार थे शाहिद कपूर और करीना कपूर। इस फिल्म में भी अच्छे खासे रोड ट्रिप दिखाई गई थी। फिल्म का संगीत दिया था प्रीतम ने। तो चलिए सुनते हैं इसे, फिल्म का ये गाना। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे हैं, जैसे दीपा पालकर जी और नितिन स्वामी एरोली से, पंकज मोहर, स्नेहा वर्ली से, जोशना दाभोलकर अंधेरी से, विजेंद्र घटोल अकोला से, सुबलक्ष्मी जी भी हमें सुन रही हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी ने भी कुछ लिखकर भेजा है, राकेश माथुर पुणे से वो भी सुन रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे राम प्रजापति जी भी हैं, अंजू अंधेरी ईस्ट से हमें सुन रही हैं, अशोक पाटिल वर्ली से, जी हाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, प्रणव शिंदे जी भी हमें सुन रहे हैं और अवधेश मयूर जौनपुर से हमें सुन रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म जब वी मेट

जी ऐसे में ठीक 12:21 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा की फिल्म हाईवे आपने ज़रूर देखी होगी। आलिया भट्ट घर से भाग जाती है और रणदीप के साथ उसके ट्रक में ट्रैवल करती है। इस यात्रा के दौरान वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये फिल्म भी खूब चली थी, इसके गाने भी हिट हुए थे, इसके संगीतकार ए आर रहमान थे। चलिए इसी फिल्म का ये गाना सुनते हैं।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: जी समय ठीक 12:31 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो. तो अभी जो आपने गाना सुना फिल्म गुलाम का, और इस गाने को पसंद किया था अशोक पाटिल और राजेश मोरे वर्ली से. उन्होंने इसलिए पसंद किया था क्योंकि वो जब भी खंडाला की तरफ जाते हैं तो यही गाना प्ले करते हैं और वहाँ का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लगता है. तो चलिए पढ़ते हैं आगे. जी हाँ, तो दोस्तों ये गाना जो है आज की प्लेलिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, यानी जो भी जो मैं आपको बताने वाली हूँ. ये गाना फरहान अख्तर द्वारा डायरेक्ट की गई डेब्यू फिल्म का है, जिसे हर ट्रैवलर को अपने रोड ट्रिप पर ज़रूर सुनना चाहिए. इस गाने को कोंकण तट पर शूट किया गया था, जिसमें सैफ अली खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना मुंबई से गोवा जाते हैं. मूवी है दिल चाहता है. तो चलिए, हमारा भी दिल चाहता है इसी तरह कहीं ना कहीं घूमने जाए, लेकिन क्या करें भाई, हम तो स्टूडियो में गानों के ज़रिए और रेडियो के ज़रिए हर जगह घूमाते हैं. और आप भी हमें बताइए कि आपको कहाँ जाना पसंद है. जैसा कि हमने आपसे कहा था, तो जल्दी से सुन लेते हैं इस गाने को.

0: जी, इस समय ठीक 12:37 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने गाने भी लिखकर भेजे हैं कौन सा पसंद है, और साथ ही लिखा है कि बहुत गर्मी भी हो रही है। जैसे कि यहाँ पर पंकज मोहोड़ जी लिखते हैं कि एक मिनट में जरा पढ़ लूँ क्या लिखा है, तब तक हम इस गाने को सुन लेते हैं, उसके बाद हम इनका मैसेज लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है मैसेज। तो बढ़ते हैं इस गाने की ओर। बहुत ही खूबसूरत है गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में है, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और इसमें भी मौसम, जादू, मितवा, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सलमान खान को कहीं बाहर जाना है और वो बुला रहे हैं, जी हाँ, भाग्यश्री को।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

जी अभी आप ये जो गाना आपने सुना फिल्म हम आपके है कौन फिल्म का, जी हाँ, क्योंकि इसी नाम से बहुत सारे फिल्में आए, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके है कौन, हमारा दिल आपके पास है, वगैरह वगैरह बहुत सारे फिल्में आ चुकी हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि ये गाना ज्योत्सना दाभोलकर अंधेरी से अपने

दोस्त के लिए ये गाना सुनना चाहती थी और साथ ही विजेंद्र घटोल अकोला से भी यही गाना सुनना चाहते थे। और यहाँ पर और भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं इस समय, जो कि लिख रहे हैं कि बहुत गर्मी है बाहर की तरफ। जी हाँ, बाहर निकलो तो कैप वगैरह साथ में लेके जाइए, साथ एक छोटा सा बॉटल भी कैरी कर लीजिए। ये तो आप सभी को पता है, इन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद बहुत समझदार हैं, यानी हमारे सारे लिसनर्स बहुत समझदार हैं। तो बढ़ते हैं अगले गाने की ओर और हमारे दो बहुत सारे अच्छे श्रोता हैं जो नए हैं यहाँ पे। हाँ, एक मैसेज आया, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। आज 12वीं क्लास 12th का रिजल्ट आया है SSC बोर्ड का, जो कि प्रणव शिंदे जी लिखते हैं कि उनकी बहन प्राची को 85% मिला है बोर्ड एग्ज़ाम 12वीं में, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि उनको बहुत अच्छा नंबर मिला है।

0: सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: जी आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए. इससे बेहतर ट्रैवलिंग मूवी शायद ही कोई और होगी. मूवी में तीन दोस्त घूमने का प्लान करते हैं और घूमने के दौरान उन्हें नए नए अनुभव होते हैं. तो सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना.

जी आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे। जैसा कि अभी हमने कहा कि हम एक मैसेज पढ़ने वाले हैं। पंकज मोहड़ अमरावती से लिखते हैं कि घूमने के लिए हिल स्टेशन पर जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के सौंदर्य और हरे भरे पेड़ और प्राकृतिक सुंदरता देखना अच्छा लगता है। आगे लिखते हैं पंकज मोहड़ जी की, अमरावती जिले में चिखलदार हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। जी बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी एक जानकारी दी कि एक ऐसा भी हिल स्टेशन है जहाँ की बहुत हरियाली है और बहुत खूबसूरत है ये हिल स्टेशन। नाम है चिखलदरा। जी हाँ, चिखलदरा हिल स्टेशन है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। आप सभी ने तमाशा फिल्म तो ज़रूर देखी होगी, इसमें भी एक बहुत ही खूबसूरत शहर की जर्नी दिखाई गई है। शहर है कोर्सिका, ये एक फ्रेंच आइसलैंड है और इस फिल्म का गाना मटर गस्ती रोड ट्रिप का पूरा आनंद देता है, यानी ये गाना बहुत ही सुंदर है मटर गस्ती। तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

जी, समय ठीक 12:53 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। ये गाना गाया है

लता मंगेशकर और साथ दिया है किशोर कुमार जी ने। फिल्म का नाम है काला पत्थर, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये गाना हम आपको सुनवाएंगे, इस गाने को सुनना चाहते थे। मुकेश वालिया देहरादून से। ये गाना भी जिंदगी पर है और रास्ते पर ही बना हुआ है, यानी कि रास्ते पर नहीं बना हुआ है, रास्ते पर फिल्माया गया है इस गाने को। शशि कपूर है इस गाने में, जो बाइक चला रहे हैं और गा रहे हैं ये गाना, और आप सुन रहे हैं इस गाने को।

अब से कुछ ही पलों में यानी ठीक 1 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए FM रेनबो।

जी समय ठीक 1:05 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। और इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपनी पसंद के गाने, यानी आप तो अभी ठीक 12 बजे से ही अपनी पसंद के गाने सुन रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। इस गाने को सुनना चाहते हैं इंदौर से अजय साखरे जी।

जी समय ठीक 1:12 हुए हैं और कार्यक्रम हिट एंड हॉट की शुरुआत हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। किशोर कुमार और सपना की आवाज़ में है और इस गाने को सुनना चाहते हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता इस समय जुड़ गए हैं, जैसे कि चेतन कुमार मानपुर गया बिहार से, ये भी हमें सुन रहे हैं, और अरविंद कुलकर्णी जी भी अभी अभी हमें सुन रहे हैं, यानी कि अभी मैंने उनका मैसेज देखा है। और सुशील यादव, रेणु यादव, इनका पूरा परिवार उदयपुर राजस्थान हिरन मगरी सेक्टर 4 से हमें सुन रहे हैं। दीपा बालकर जी भी हमें सुन रही हैं, बाबा दादर से हमें सुन रहे हैं, राकेश माथुर जी भी हमें सुन रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट भी भेजी है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी के फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूं। और साथ ही संदीप कुमार जी भी हमें सुन रहे हैं, इनका पूरा परिवार इस समय कार्यक्रम हिट एंड हॉट सुन रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। साथ ही एक और श्रोता जी हैं जो कि इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। जी हाँ, ये भी हमें सुन रहे हैं, यानी सभी लोग सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज नहीं करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, लेकिन सुनते हैं। तो उन सभी श्रोताओं का फ़ोन हमें आता है तो हम उनसे बात भी कर लेते हैं समय निकाल कर, यानी कि गाने जब प्ले होते हैं उस समय। तो बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।

जी आपसे कुछ ही पलों में यानी ठीक 1:30 पर आप सुनेंगे मराठी में प्रादेशिक समाचार। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए FM रेनबो।

जी हाँ, 1:40 हुए हैं, तो चलिए कार्यक्रम हिट एंड हॉट को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गाना। इस गाने को सुनना चाहती हैं दीपा पालकर।

इस समय ठीक 1:45 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट एंड हॉट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। इस गाने को सुनना चाहते हैं तमिलनाडु कोयंबटूर से श्याम जी। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

0: में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को

काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की दो दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल
मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले दो दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम लव यू जिंदगी। कुछ बातें जिंदगी से जुड़ी हुई, कुछ बातें दिल से जुड़ी हुई, कुछ बातें हमसे जुड़ी हुई और कुछ गीत ऐसे जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मूवी माइलस्टोन।

ऑफ कोर्स शाम का जो है वक्त है, और चाय और गर्मा गर्म कॉफ़ी या फिर उनके साथ कुछ पकौड़े वकौड़े का प्लान तो चल ही रहा होगा। और शनिवार की शाम है यानी कि वीकेंड है, तो ये भी हो सकता है कि आप कहीं पर जाने का भी प्रोग्राम बना रही हो, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये जो समर वेकेशंस भी शुरू हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए, यानी पूरी फैमिली के लिए, कि हम पूरी फैमिली के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हैं। तो ये जो हम एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना फैमिली के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, ये हमारे लिए यादें बन जाती हैं, एक सुहानी यादें। जब भी हम कभी आने वाले कल में, फ्यूचर में, भविष्य में, हम जब भी कभी ये पल याद करते हैं, तो ऐसा लगता है हम फिर वही पल जी रहे हैं। तो ज़रूर ऐसी कुछ जो है पिकनिक हो या फिर बाहर जाने का कुछ प्रोग्राम हो, बिल्कुल आप उसे मना मत कीजिएगा। और ज़रूर ऐसी कोई पिकनिक हो या फिर बाहर जाने का प्रोग्राम हो, ज़रूर वो प्लानिंग करके आप वो जो एक पिकनिक है वो अपनी ज़िंदगी में याद बन जाए, इस तरह से आप सेलिब्रेट ज़रूर कीजिएगा।

1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

यादें, यादों पर हमारा कोई बस नहीं चलता। यादें तो आएंगी ही, और जब यादें याद आएंगी तो और भी जो हैं, ये जो यादों के बादल हैं, ये हमारे दिल पर बरसने शुरू हो जाएंगे। और ये दिल पर जब ये बादल बरसते हैं तो बरसात आंखों से होती है और शुरू हो जाता है एक सिलसिला यादों को याद करने का।

हम जीवन में तमन्नाओं का एक कारवां ही लेकर चलते हैं और ये सारा कारवां ना तमन्नाओं का हमारे दिल में ही होता है। कई तमन्नाएं होती हैं जो पूरी हो जाती हैं और कई तमन्नाएं ऐसी होती हैं जो अधूरी भी रह जाती हैं। तो ये जो अधूरी रहती है ना तमन्नाएं, ये हमें याद रहती हैं, जितनी पूरी हो जाती हैं उतनी तो हम भूल भी जाते हैं पूरी हो जाने के बाद। और ये जब ये अधूरी तमन्नाएं इकट्ठा होती है ना हमारे दिल में, तो हमारे दिल को बहुत दुखी करती हैं, एक टीस बनकर रह जाती हैं हमारे दिल में। जैसे कि उन अधूरी तमन्नाओं से हमारा जीवन ही अधूरा रह गया है। कभी कभी तो हम ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं लेकिन ये नहीं याद करते कि जितनी भी तमन्नाएं पूरी हुई हैं उनसे हमारा जीवन कितना खुशनुमा हो गया है।

जी हाँ, कितनी सच बात है। लेकर हम ये बेचारा दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, हर मंजिल की तरफ जाते हैं, हर तमन्ना पूरी हो ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि जितनी भी हसरतें हमारी पूरी हो फिर भी हम खुश नहीं होते, कुछ न कुछ पाने की आस फिर भी होती है। भाई इसी का नाम तो जिंदगी है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी प्रोग्राम में आज बस इतना ही। सैटरडे शाम आप हैं आकांक्षा के नाम, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम। और आपको ये बता दें कि ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे समाचार मराठी में और 6:15 पर आप सुनेंगे अंदाजे में आप प्रोग्राम फिर से मेरे साथ। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा, लेकर हाजिर हूं चंद नायाब शेर और कुछ चुनिंदा गजलों का प्रोग्राम अंदाजे बयां, जिसे आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। शाम के ठीक 6:15 और 45 सेकेंड हो रहे हैं। सुनते हैं कुछ बेहद प्यारी सी गजलें।

अंदाजे बयां प्रोग्राम सुन रहे हैं आप 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। अब देखिए ना, हम अंदाजे बयां की बात कर रहे हैं और एक खूबसूरत सा शेर हम अंदाजे बयां पर ही आपको सुनवा रहे हैं। एक शायर ने कहा है, सिर्फ अंदाजे बयां बात बदल देता है,

सिर्फ अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो हमारा जो लहजा है, हमारी जो कहने का अंदाज है, वही जो है वो बात समझाने की काबिलियत रखता है, बात को संवारने की काबिलियत रखता है। वरना दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है जो नई हो। आप सुन रहे हैं अंदाजे बयां प्रोग्राम, और चंद शेरों के साथ कुछ गजलों को भी हम पेश कर रहे हैं आपके लिए।

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। प्रोग्राम है अंदाजे बयां। दोस्तों, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जी हाँ, बात करने का सलीका होना चाहिए, तभी तो हमने पहले भी कहा कि अंदाजे बयां हो, ठीक, तो फिर हर बात जो है वो सवर जाती है, सुधर जाती है। और अगर सलीका हो तो हर बात सुनी भी जाती है।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: आपने ट्यून किया है 107.1 MHz पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा और स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं ठीक शाम के 7:11। दोस्तों, हम तुम प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और हम तुम प्रोग्राम में हम आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं। आप जो गीत हमें भेजते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, फरमाइश करते हैं, हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो चलिए, बिल्कुल हम बात कम करेंगे इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा गानों की फरमाइशें हो वो पूरी हो जाए। शुरुआत करते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म के इस गीत के साथ।

दोस्तों, आपकी फरमाइशों पर आधारित प्रोग्राम है ये हम तुम, और हम आपकी जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर रहे हैं। आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। जिन श्रोताओं के मैसेजेस हमें मिल रहे हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। अरविंद कुलकर्णी जी का इचल करंजी से, संजय पाटिल, मुकेश वालिया जी का देहरादून से, शुभदा जी का मुंबई से, पंकज मोहर जी का अमरावती से, बाबा इनका दादर से, फिरोज सिगनपुरिया, रजनीकांत पाटिल इनका वधावन से, प्रणव शिंदे, अजय साखरे जी का इंदौर से, राकेश माथुर जी का पुणे से, दीपा पालकर जी का मुंबई से, प्रवीण जी का मुंबई से, मेहर अरोरा जी का पदमपुर से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जी का पंजाब से, हीरामणि वर्मा जी का छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर अंजू जी का अंधेरी से। और भी नाम है हमारी लिस्ट में, लेकिन उससे पहले आपको गीत ज़रूर सुनवाऊँगी, आप ही का जो है फरमाइश किया हुआ।

आप सुन रहे हैं हम तुम प्रोग्राम आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर, जिसे आप सुनते हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेनबो सखी आकांक्षा, आप ही के फरमाइशी गीत लेकर। और आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, और जिन श्रोताओं ने मैसेजेस भेजे हैं उस लिस्ट में कुछ नाम रह गए हैं, वो ज़रूर आपको बता देना चाहती हूँ। राजस्थान से सुशील यादव, रेनू यादव, शरद हार्दे, इन्होंने अहिल्या नगर से हमें मैसेज भेजा। गणेश कोल्हे जी ने पंढरपुर, हितेंद्र दास जी ने असम से, चेतन कुमार जी ने गया बिहार से, दिग्दर्शन और कविता जी ने मेरठ से, विजेंद्र घाटोल जी ने अकोला से, अशोक पाटिल और राजेश मोरे जी ने वरली से, अशोक जोशी और राजश्री जोशी इन्होंने विक्रोली से हमें मैसेज किया है। तो हमें जो हैं वो आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो फरमाइश किए हुए गीत हैं वो आपके लिए प्ले करें। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जब वी मेट इस फिल्म से।

हम तुम प्रोग्राम में आप अपने फरमाइशी गीत सुन रहे हैं और एक आखिरी फरमाइशी गीत आपको सुनवाने वाली हूँ। ये है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से। आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:53 हो रहे हैं। ये आखिरी गीत पेश है और इसके साथ ही दीजिए आपकी रेनबो सखी आकांक्षा को इजाजत, लेकिन सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, क्योंकि ठीक 8 बजे रॉक विथ जॉक प्रोग्राम के साथ मुंबई के नंबर 1 RJ फली होंगे आपके साथ और वो बहुत ही प्यारे प्यारे गीत और प्यारी प्यारी बातें लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ यहीं स्टूडियो में बैठे हैं और ठीक 8 बजे आपकी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो दीजिए आकांक्षा को इजाज़त, नमस्कार।

0: Been on the height of Beatlemania. Engelbert went to number one with this and stayed there at number one in 29 countries 60 years ago. His biggest number one of all time is Please Release Me. Keep listening in to Akashwani's Rainbow Channel. We'll be back with more fabulous music at 9:15. Stay tuned right now for the news in Hindi, followed by the news in English at 9 p.m. This is Akashwani's Rainbow Channel on FM 107.1 MHz. Please stay tuned for the news.
1: Love again.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ।

0: था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
1: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज C.DOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस C.DOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय

0: में मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के चार जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है, और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाए, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
3: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
4: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं, या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं, इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे देश प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े, जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Nearly 90% voter turnout recorded in re-polling at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Counting of votes on Monday for assembly polls in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and Puducherry. Election Commission deploys additional counting observers and police observers in West Bengal. Government launches cell broadcast system to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. 4 security personnel killed in an IED blast near Kanker Narayanpur district border in Chhattisgarh. Renowned lyricist Prasoon Joshi appointed as chairman of Prasar Bharati. And in cricket, BCCI announces Indian squad led by Harmanpreet Kaur for ICC Women's T20 World Cup. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Mograghat, a Poshtim constituency, and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the 2 assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring the

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार

0: है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

खुशामदीन नाज़रीन हज़रात, आप सुन रहे हैं बज़्म रंगे महफ़िल, अपने दिल की आवाज़ सबीहा नक़वी के साथ। जी हाँ, ज़रा गर्दन झुकाकर देखेंगे जनाब तो नाजीस की सूरत को अपने दिल के किसी कोने में महफूज पाएंगे। दिल की गहराइयों के साथ आप सभी को खुशामदीद खैर मकदम कहती हूँ मैं। मौसीकी के एक ऐसे खूबसूरत सफ़र में जिसमें हम और आप मिलकर तय करेंगे ये एक घंटा। जी हाँ, एक ऐसी खूबसूरत कहानी इस मौसीकी के सफ़र में हम एक दूसरे को सुनाते हैं जिसमें बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे एहसास शामिल रहते हैं। कुछ आपकी सुनूंगी, कुछ अपनी कहूंगी, साथ ही साथ शेर व शायरी का दौर भी जारी रहेगा। जो कुछ भी अच्छा कलाम है आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश रहेगी मेरी, लेकिन वादा है आपका भी कि आप भी मेरे साथ रहेंगे, मौजूदगी इसी तरह दर्ज कराएंगे, वादा आप भी निभाएंगे मौसीकी के इस खूबसूरत सफ़र पर मेरे साथ, यूं ही धीरे धीरे मध्यम कदमों से चलते जाएंगे। तो ये सफ़र इसी तरह रहेगा बरकरार आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अपना ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है बज़्म-ए-रंग-ए-महफ़िल, जो इस वक्त सुना जा रहा है दिल्ली।

और दिल्ली के तमाम आसपास के इलाकों में, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हम पहुंच रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और दिल्ली के तमाम आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हमारे साथ हमारी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। तो लीजिए जनाब, पहला खूबसूरत जो नगमा आप तक पहुंच रहा है। और हाँ, ये भी बता दूँ कि आज एक बार फिर से बज़्म रंगे महफिल नाम रहेगा, उन पुरानी खूबसूरत हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल किए गए शाहकारों के नाम जो गज़लों में भी हैं, गीतों में भी हैं, नगमों में भी हैं, आज फिर से आपके सामने वही नज़र करूंगी। उम्मीद है कि बज़्म रंगे महफिल की ये पेशकश भी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत बेहद लाजवाब एक शाहकार के साथ जो बयां करेगा जज्बात दिल से दिल तक के।

जी हाँ हुजूर, कोई इस तरह से वादा करने का आपसे अगर अहद कर ले तो फिर वो वादे पे आपका एतबार होना लाजमी है। जी हाँ, कोई शिद्दत से अगर वादा करता है तो आपको लगता है कि शायद वो सारी वादे सारी कस्मों पर खरा उतरेगा, और जब आप किसी से ये वादा कर लें तो मेरी जानिब से आपको ये सलाह है कि उस वादे पर आप खरे भी उतरें, उस वादे को निभाएं भी, उस वादे के साथ कोई भी दगा ना करें, कोई धोखा ना करें, कोई फरेब ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते शायद सामने वाले इंसान को आपसे ना चाहते हुए भी बहुत सारी उम्मीदें बन जाती हैं। अगर किसी के साथ आपने कोई भी वादा किया है, बेख्याली में ही सही, लेकिन कोशिश करें कि वो वादा निभा दें, या फिर ऐसा कोई वादा करें ही नहीं जो दूसरा इंसान आपसे किसी भी तरह की वाबस्ता उम्मीद रखे। ऐसी उम्मीदें जो टूट कर किरची किरची बिखड़ जाएं, ऐसी उम्मीदें जो इंसान को अंदर तक जख्मी कर दें, ऐसी उम्मीदें क्यों बांधनी। अगर आप कोई वादा निभा नहीं सकते, किसी की ज़िंदगी बदल नहीं सकते, किसी को हसीन खूबसूरत ज़िंदगी दे नहीं सकते, तो आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप उसकी ज़िंदगी में वो ज़ख्म दे दें। इसीलिए शायद शिद्दत से की गई मोहब्बत का जो मज़ा है वो अलग होता है, या फिर यूँ कहूँ कि शिद्दत से की गई मोहब्बत ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार होती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन तो है मगर, कि मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन तो है मगर, ज़िंदगी में टूट कर चाहना सिर्फ एक बार होता है।

जी हाँ जनाब, किसी की कदर किसी को खोने के बाद ही आती है, किसी के दूर जाने के बाद ही आती है। और ऐसा होता क्यों है? अगर किसी की कदर करनी है तो उसके साथ रहते कर ली जाए। अगर वो दूर जाकर आप उसकी कदर को समझ रहे हैं, उसकी अहमियत को मान रहे हैं, तो फिर उसका दूर जाने के लिए आप को या उसको अपनी कदर समझाने के लिए उसको दूर जाना ही पड़ता है। या ये क्यों हम इंतज़ार करते हैं, इस चीज़ का मुंतज़र रहते हैं कि कोई दूर जाए या फिर खुदा ना खास्ता बिछड़ जाए तो उसकी अहमियत या उसकी इम्पोर्टेंस को समझी जाएगा। जब आपके साथ कोई रहता है, बेहतरीन रिश्ता निभा रहा होता है, उस वक्त भी उसकी कदर कर लें। थोड़ी सी तवज्जो तो देखिए हर इंसान अपने लिए चाहता है, हर इंसान मुस्तहक होता है थोड़ी सी तवज्जो की, एहसास की। और अगर आप उसको वो दे देते हैं तो उसको लगता है कि पूरे जहाँ की खुशियाँ उसने हासिल कर ली। इसीलिए अगर थोड़ी सी तवज्जो कोई भी इंसान आपसे मांग रहा है, वक्त मांग रहा है, तो उसे ज़रूर दें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको अपना कीमती वक्त कोई भी इंसान दे रहा है तो वो अपना बहुत कुछ दे रहा है। फिलहाल आप यही चीज़ कर रहे हैं मेरे साथ, अपने पैगामात मुझ तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, जुगनों की मानिंद कुछ पैगामात हैं जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर झिलमिलाने लगे हैं और बताने लगे हैं कि आप भी इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमेशा की तरह सौरभ अनेजा ने गाज़ियाबाद से अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करा दी है। बेहतरीन लफ्ज़ों में उन्होंने अपने दिल की बातें मुझ तक पहुँचाई हैं। सौरभ, बेहद शुक्रिया आपकी सभी बातों का जो आपने मुझ तक पहुँचाई हैं। और वाकई मैं जानती हूँ कि आप सच में मेरी दिल से कद्र करते हैं और मेरे हर प्रोग्राम को, हर शो को आप बेहद शिद्दत से सुनते हैं और अपना फीडबैक भी देते हैं। और इसके लिए तहे दिल से मैं आपकी और आप जैसे सभी लिसनर्स की शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं ग्रेटर कैलाश से, ओम प्रकाश जी। गुड इवनिंग आरजे सबिहा नकवी एंड लव गुरु, जो कि ये खिताब मुझे दिए रखते हैं। चलिए, थैंक यू। और कह रहे हैं कि बेटा हाउ आर यू, आई एम टोटली फाइन, यानी मैं बहुत सही हूँ सर। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, पर हर मुश्किल बेकार नहीं होती। जब सब्र से काम ले इंसान तो उसकी हार नहीं होती। ये कुछ चुनिंदा खूबसूरत लाइन है जो उन्होंने मुझ तक पहुँचाई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और हौसला मिला इन सभी खूबसूरत बातों को सुनकर। दानिश खतौली से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी हमाम, कैसी हैं आप? आप मेरी फेवरेट आरजे हैं और अच्छे सॉन्ग्स आप प्ले कर रही हैं। और प्लीज़ मेरा मैसेज पढ़ दो। जी हाँ, आपका मैसेज पढ़ दिया गया जनाब। और कैसे आप जब गुजारिश करते हैं तो आपके मैसेजेस को इंसान नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल आपका मैसेज हम पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ रहे हैं उन लोगों का मैसेजेस भी जो हमारे साथ लगातार शो में शामिल हो रहे हैं और अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा जनाब। हाँ, अनुभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नालंदा बिहार से। वो भी मुझे कह रहे हैं कि सबिहा, आप जानती हैं कि मैं आपके शो का रेगुलर लिसनर हूँ, आपके सभी शो सुनता हूँ, आज भी इस शो में आपके साथ शामिल हूँ। तो जी हाँ जनाब, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मुंतज़र रहिए इसी तरह हमारे हर प्रोग्राम का। और फिलहाल लुत्फानंदोज होजिए आज की अगली खूबसूरत पेशकश के साथ। उम्मीद है कि आपको ये बज़्म रंगे महफिल का खूबसूरत सफ़र पसंद आ रहा होगा। लीजिए ये अगला खूबसूरत शाहकार आप सभी के लिए।

हुजूर मैं तो वही हूँ और आप भी वही हैं, प्रोग्राम भी वही है, बज़्मे रंगे महफिल आप सुन रहे हैं अपने दिल की आवाज़ सभी हनकवी के साथ। लगातार जारी है ये खूबसूरत कारवां और ढलती हुई इस रात के सफ़र में धीरे धीरे करके जैसे जैसे रात ढल रही है मौसीकी का ये सफ़र तमाम हो रहा है और साथ ही साथ एक नया आगाज़ भी हो रहा है। जी हाँ, आगाज़ एक नई दुनिया का आगाज़, नए जज्बातों का, एहसासों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का।

आज आप शायद इस प्रोग्राम के बाद सुनकर कुछ नई उम्मीदें बांधें, कुछ नए फैसले करें, कुछ नई चीज़ों को अपने अंदर जगा दें। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की कही गई बात से इंसान अचानक से कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी अगर मेरी कही गई किसी भी बात से आपको थोड़ा सा भी हौसला मिले या कोई सबक ज़िंदगी में हासिल हो, तो हो सकता है कि आज शायद आपकी अंदर अगर कोई बुरी चीज़ है या बुरी आदत है तो उसको हटाकर आप उसको एक अच्छी आदत में तब्दील कर लें। ऐसा मैं मान रही हूँ। अब ये कितना हो पाता है मुमकिन, ये तो आप पर मैसर करता है, लेकिन मेरी उम्मीद तो यही है कि हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को जगा दें, अच्छी बातों को जगा दें, अच्छे लोगों को जगा दें, तो तमाम तर मुश्किल और परेशानियाँ आप दूर कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी के ऐसे ही सारे जो मसले मसाइल हैं उनसे आप आज़ाद हो सकते हैं। फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, नमस्कार आरजे सबीहा, रंगे महफिल में आपका स्वागत है। एम राजकुमार जी हमारे साथ हैं, इन्हें भी हमारा जो प्रोग्राम है अच्छा लग रहा है, बेहद शुक्रिया। और विजय कुमार नामदेव जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्ते सबीहा जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए दुआ दी। और दोनों ही प्रोग्राम्स के सॉन्ग्स बेहतरीन हैं, प्रेजेंटेशन कमाल है और अच्छा लग रहा है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, थैंक यू सो मच, आप भी हमेशा खुश रहें, इसी दुआ के साथ। जी हाँ, बज़्म रंगे महफिल के कारवां को हम आगे बढ़ाते हैं और एक खूबसूरत शेर आपकी नज़र करती हूँ कि करती हैं सवालात मुसलसल उसकी निगाह, ये तर्ज तकल्लुफ मुझे अच्छा नहीं लगता, कहते हैं मुझे देखकर अक्सर मेरे अहबाब, कि कहते हैं मुझे देखकर अक्सर मेरे अहबाब, ये शख्स अकेला है मगर तन्हा नहीं लगता। जी हाँ, तन्हाई क्या होती है जनाब, ये उनसे पूछिए जो तन्हाइयों के आदि बन चुके हैं।

शिकायत की तो यहाँ गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक गुंजाइश यहाँ पैदा कर दी है। जी हाँ, अनुभव कह रहे हैं कि सबिहा, क्या मैं सिर्फ लिसनर हूँ, आपका दोस्त नहीं? बिल्कुल, हर लिसनर दोस्त ही है जनाब, और हर लिसनर दिल के पास है, हर दोस्त दिल के पास है, और लिसनर और दोस्त दोनों मुझे लगता है कि एक ही तो है। शायद दोनों एक दूसरे की तरफ उतने ही जानिब हैं जितने हम और आप। फिलहाल जी हाँ, बस में रंगे महफिल का ये खूबसूरत कारवां चल रहा है, और यहाँ शिकवे शिकायतों के लिए तो कतई जगह नहीं है। यहाँ बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी खूबसूरत बातें जिसमें मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, लिहाज है, अदब है, तहजीब है, और ऐसी जगह मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी कसक, थोड़ी सी भी शिकवे, थोड़ी सी भी शिकायतें बेजा शामिल हो जाते हैं। लेकिन बदनसीबी ऐसी है कि कई बार बाज दफ़ा कुछ लोग रिश्तों के मामले में बदनसीब हो जाते हैं या मोहब्बत के मामले में बदनसीब हो जाते हैं और उम्मीद खो बैठते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई उम्मीद कतई ना आप छोड़ें, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है, ये खुदा ने भी कहा है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों से भी सुना है। इसीलिए उम्मीद को ता कयामत जिंदा रखें, खुद में, अपने आप में, बल्कि आपकी चारों तरफ, आपकी जानिब अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने अंदर नाउम्मीदी को पैदा कर चुके हैं, तो उनकी शख्सियत को भी निखारने में मदद करें, उनको भी एक ऐसा हौसला दें जिससे उनका भी मॉरल जो है वो ऊपर उठ सके, उनको भी हौसला मिल सके, उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। ये नहीं कि अगर कोई आपके सामने ऐसी बातें कर रहा है जिससे आपका जो हौसला है वो कमज़ोर पड़ रहा है, आपकी शख्सियत कमज़ोर हो रही है, तो आप अपनी शख्सियत को धीरे धीरे और कमज़ोर कर लें। मुझे लगता है कि शख्सियत को निखारने के लिए बेहतरीन है कि आप खुद में, अपने आप में ऐसा हौसला पैदा करें जो दूसरे की शख्सियत को निखारने में भी मददगार साबित हो सके। और जहाँ तक बात है रिश्तों की, मोहब्बत की, तो जनाब ये काफ़ी हद तक किस्मत पे, मुकद्दर पे भी मैसर होता है, और मोहब्बत टूट कर चाहना किसी को ये भी ज़रूरी है, ये मैसर करता है कि कैसा इंसान है। किसी के अंदर बेतहाशा मोहब्बत और जज्बात और एहसास होते हैं। कहते हैं ना कि कोई बहुत जज्बाती है, बहुत इमोशन से भरपूर है, वहीं कुछ लोग जज्बात से खाली भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द हमेशा तलाशते हैं। इसीलिए शेर अर्ज किया है जनाब कि बहुत कुछ तुझसे बढ़कर भी मयस्सर था मयस्सर है, बहुत कुछ तुझसे बढ़कर भी मयस्सर था मयस्सर है, न जाने क्यों ज़िंदगी में तेरी ज़रूरत कम नहीं होती।

जी हाँ जनाब, यही सवाल मेरा दिल भी पूछ रहा है कि अल्लाह जाने क्या होगा, यानी आप मुझे एक टीचर भी बनाने पे मजबूर कर रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं, जी हाँ अनुभव, नालंदा बिहार से मेरे साथ जुड़े हैं। कुछ जो वर्ड्स हैं, कुछ जो शब्द हैं, उनके मतलब उर्दू के जो ख़ास हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है कि सबिया मुमकिन हो तो उनका मतलब बता दीजिए। तो जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, मैं आपके साथ ज़रूर आपको मतलब बताने की कोशिश करूँगी जनाब। हाँ, आप पूछ रहे हैं कि कुफ्र क्या होता है। कुफ्र होता है जब हम कोई गुनाह कर देते हैं और उसका कफारा, यानी उसका जो कह सकते हैं कि उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ देना पड़ता है, यानी उसका हमें अज्र देना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ हम कहते हैं ना कि भाई आपने ये गुनाह कर दिया, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यानी कोई सेवा कर सकते हो या किसी के लिए कोई सदका दे सकते हो। वो कहा जाता है कि कुफ्र ना अदा करें, यानी बुरे जो चीज़ें हैं वो ना करें। कुफ्र में कुछ भी शामिल हो सकता है, यानी बुरी बातें या बुरे चीज़ें किसी के लिए या बुरे लफ्ज़ आप किसी के लिए निकालते हैं तो वो। और मैसर का मतलब होता है डिपेंड होना, जैसे कि आपने पूछा है कि मैसर का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है जब आप किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप किसी पे मैसर हो गए। कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ डेली, तो अच्छा लगता है जब मतलब पता चल जाए। तो मुझे भी जहाँ तक पता था मैंने आपके साथ साझा करी। और इसी के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े हैं हमारे लिसनर्स, आप भी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए जनाब। अपनी मौजूदगी तो आप मुझे दर्ज करा ही रहे हैं। गुलफाम खान दिल्ली शादरा से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोग्राम इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है और कुछ भेज रहे हैं कि कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छिपाते छिपाते। दर्द क्यों है ज़िंदगी में जनाब, मुस्कुराइए, कम से कम इस एक घंटा तो ज़रूर मुस्कुराइए। आप मेरी कह सकते हैं कि इस खूबसूरत

में हैं तो यहाँ आपको मुस्कुराना ही है। अपने लबों पर एक खूबसूरत मीठी मुस्कान सजाकर ये प्रोग्राम आप सुनेंगे तो खुद ब खुद आपके लबों पर एक मीठी और खूबसूरत मुस्कान आ जाएगी। और जब बात हो मौसिकी की तो ये हमेशा कहती हूँ कि आपके लिए एक दवा का काम करती है, एक मेडिसिन का काम करती है। तो इस दवा को लीजिए, सुकून से आँखें बंद करिए और खूबसूरत मौसिकी में खो जाइए। जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब की मेलोडियस आवाज़ आपके ऊपर क्या जादू बिखेरेगी ये मुझसे ज़्यादा आपको पता है।

ढलती हुई इस खूबसूरत रात के सफर में हुजूर आप भी मेरे साथ बदस्तूर जारी हैं, शामिल हैं और अपनी मौजूदगी लगातार मुझ तक दर्ज करा रहे हैं। और एक और खूबसूरत मैसेज हमारे पास पहुंचा है, सनी काम्बोज पटियाला से जुड़े हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स आप प्ले कर रही हैं, ऑसम फीलिंग्स आ रही हैं रेडियो को सुनकर, घर की छत पर इस वक्त ठंडी ठंडी हवा में मैं इस शो को सुन रहा हूँ, एहसास बयां नहीं कर पा रहा हूँ, अलग ही एहसास है, मानिंद ऐसा लग रहा है जैसे 2005 में शामिल हूँ और एफएम रेनबो की तो बात ही अलग है, बड़ी अच्छी फील आ रही है। चलिए शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ जुड़े हुए। देवस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, देव साहब आपका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, वेलकम है, खुशामदीद है।

0: जी हाँ हुजूर, ढलती हुई इस रात के खूबसूरत कारवां में सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और लीजिए, अब अर्ज़ करती हूँ आपके सामने ये अगला शेर कि तेरी जुदाई में दिल बेकरार ना करूँ तो हुक्म कर तेरा इंतज़ार ना करूँ, बेवफाई करनी है तो कुछ इस तरह से कर मुझसे कि बेवफाई करनी है तो कुछ इस तरह से कर मुझसे कि फिर तेरे बाद किसी का एतबार ना करूँ।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

जी हाँ हुजूर, अब मैं भी आपके हालचाल बाकायदी से पूछ के जाने वाली हूँ। जी हाँ, फिलहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा है जनाब, लेकिन कल इंशाल्लाह फिर से होगी मुलाकात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए रखिएगा अपना वही खासम खास ख्याल जो कि आपको हमेशा रखना है। जी हाँ, इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। जाते जाते ये आखिरी शाहकार आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम बट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। मणिपुर में इम्फाल उखरुल मार्ग पर कुछ अज्ञात हथियारबंद उपद्रवियों ने राहगीरों पर गोलीबारी की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई और सामान्य यातायात बाधित हो गया। ये घटना उखरुल जिले के लिल्टन पुलिस थाना के अंतर्गत न्यू हेवन और टीएम कसोम क्षेत्र में हुई। घटना का समाचार मिलने तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 12:05 का समय और श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम जीरो आर शो का। आज के शो में आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आकाशवाणी
1: जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 12:22:17 कार्यक्रम जीरो आर शो में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल और साथ हैं खूबसूरत गीत रात के इस पहर में।

पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, 12:35 और 28 सेकंड, कार्यक्रम जीरो आर शो।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि फलता विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को हुए मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना क्षेत्र कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर सहित कई राज्यों में कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 1:05 और 52 सेकंड का और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुहानी रात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक बूथ भी शामिल है उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला

0: 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए देखा गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, बिहार, पंजाब में अगले 2 दिनों तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 2:05 और 52 सेकंड का। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

वाणी आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 2:20 और 16 सेकंड का। कार्यक्रम भुलाए ना बने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी 2:38 और 5 सेकंड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: इतना काम, बीमार पड़ जाओगे। वैसे नाटक किस लिए?
1: तुम्हें ये नाटक नजर आ रहा है? मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है।
0: इतने बड़े घराने की लड़की होकर ये सब क्यों कर रही है? तुम्हारे एक इशारे पर सैकड़ों नौकर आकर ये काम कर जाएंगे। फिर ये दिखावा क्यों?
1: मुझे सफाई देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ। यूसुफ की माँ हमारे यहाँ नौकरी किया करती थी। बचपन में उसी ने मुझे पाला, माँ से ज्यादा प्यार दिया। जब उसकी अपनी बेटी जोनी मर गई तो वो नौकरी छोड़ के यहाँ वापस आ गई। अब जब भी मैं कश्मीर आती हूँ कुछ दिन उनके साथ बिताती हूँ। उनके लिए वही सब करती हूँ जो उनकी अपनी बेटी किया करती थी। इससे मुझे चैन मिलता है और एक तरह का सुख भी। मैं ये सब बातें तुम नहीं समझोगे, अब भी नहीं समझे आप। मैं आरती हूँ, काजल की बेस्ट फ्रेंड। उसे नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया। जानते हैं वो यहाँ सिर्फ आपके लिए आई है। बचपन से उसे जानती हूँ, बहुत जिद्दी है। अगर वो आपके लिए यहाँ तक आ सकती है तो आपको छोड़ के जा भी सकती है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रहे हैं, अगर वो अभी चली गई तो आप जिंदगी भर तरसेंगे, पछताएंगे।
0: काजल, I'm sorry काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा। काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
1: तो कहो।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते

0: और दूसरी के जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला एलपीजी वाहक पोत एमटी सर्वशक्ति जिसमें भारत के लिए 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है, होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 13 मई को इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े आने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से

0: प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना कल सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी ची नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम

चिट्ठा झाड़ाला बंद लाया गोरा हलुनिया खावो सारे बंद तोड़ा हाँ इच्छे क्या धड़ाला बांध लाया घोड़ा हलुनिया खाव सारे बंध तोड़ा न करे उशीरा बेल फार धाला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला सकल चपारी नारी नाम बोला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला।